तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा अंत

की कृपा मोहे करो। एक साखी है सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नू मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़ियां दी लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी 52 कवियां विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तैनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो। महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तैनू ऐसे राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो। इहदे वर्ग महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात उहदा नाम है, ये ओनू दिंदा जिहदे ते ओह कृपा कर दे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो तेरे बख्शिया दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़।

सेवा परवान करनी धन का नियम भी तो किया आती है दुनिया की कम्बा का जल त्याग के सूर्य के लिए इस वेले का काम है गुरु दरबार में कुछ हाथ भी पढ़िए अते हम आप ये अमृत ने कीर्तन रागा दे कुछ गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा अनुसार गुरु अर्जन साहब की मर्यादा अनुसार सरवण कीता है स्वतंत्रता दे आओ अंत दे सर्वत माई भाई जितने गुरु चरणा के बैठे हो छोरी आर की अरदास बेनती दो दिन करनी है सतगुरु दात्या की हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साडी छोरिया विच अपने पवित्र नाम की खैर पाओ आओ जपो सारे लवाओ हाजियां कोई रिश्ता खाज न जाए।

बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया।

बिन विद्या कहाँ को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच का

गोविंद ना भजे अहं बुध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। मोढ़े वस्त्र काजर में

कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उना ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे वपारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

मनुख भक्ति करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है, महापुरुषां दे चरणा दी पूजा कर, उन्हां दे चरणा ते सियाणपां छड़ के जदों अपना सिर रखेगा, बस बाबा जी कहंदे ने जवां दी मार तो तैनू छड़ा लेंगे। कबीर जी ने भी आखिया

नमो पान की बाण गंगा तरंगी, मेरे साम है मोग दाती अपंगी, मेरे साम है मोग दाती अपंगी, जाऊ म्यान ते वीर तो गौ सड़क है, जाऊ म्यान ते वीर तो गौ सड़क है, परले काल के सिंह बनके, परले काल के सिंह बनके, तलवार श्री खग खंडा, तू ही तेग तलवार श्री खग खंडा, महारुद्र रूपा विरूपा प्रचंडा, प्रजा दंडनी बिंद

पावन वाणी का कीर्तन आप जी सुन रहे हो। कुछ चुनवे शब्द मैं थोड़ी सेवा च पढ़ने लिए हाजिर होया। गुरु गोविंद सिंह जी दस रहे कि मेरा नाम गोविंद सिंह है और मैं शस्त्र का खिलाड़ी हूं, शस्त्र का पुजारी है। मेरा जो वाहिगुरु है वह शस्त्र है और शस्त्र तो बिना मैं होर किसी का आसरा नहीं। इसलिए मैं यह भरोसा है जिसके कोल शस्त्र है और जिस दा शस्त्र के उत्ते पूरा कंट्रोल है, यानी पूरी आराधना जिसकी शस्त्र की, उसकी कदे भी हार नहीं हो सकती। आज तू ही जग वीर, तू ही निशानी जीत की। यह जो शस्त्र है, जो शस्त्र का खिलाड़ी है, शस्त्र का पुजारी है, शस्त्र की जो पूजा करता है और शस्त्र नूं चलाउणा जानता है, उसकी जंग विच हार नहीं हो सकती और सदा ही अकाल पुरख की कृपा द्वारा उसकी हर मैदान फतेह होंगी है। यह गुरु गोबिंद सिंह का मुख वाक्य। और नाल उन्होंने एक गल होर दसी, उन्होंने कहा मैं सिंघां नूं पंज ककार की रहत दिती है ते रहत दे नाल पंज शस्त्र भी दिते ने। वो रहत की है और शस्त्र की ने, उन्हां दी मुख वाक बाणी तुसी श्रवण करो। गुरु साहिब कहिंदे

शस्त्र प्रमाण तीर, तीर मतलब निजा, तफंग तीरो तफंगो बंदूक, बड़ो राम जंगो रिवाल्वर, घनक धार अणियर, धनुषबाण और उसके तीर जड़े ने अणियर वर्गे होने चाहिए, अणियाले तीर जड़े दूसरे तीर ने ना वह वज जाना ते मुड़के कढ़े जा सकते हैं ते आदमी बच सकता है, पर अणियर तीर जड़े ने वह बाहर नहीं आते, जदों एक बार अंदर तस जाना जदों खिचोगे नाल ही अंदर भी नाल ही लै आएगी, उसदियां दो कड़ियां होंदियां एवं मुड़िया हुई है, एक सीधी होंदी ते दो एवं मुड़िया होंदी, सीधी दे अंदर चली जाती तो बाहर आने लगे, दूजिया जड़िया ने वो नाल फिर कहिंदियां हुण आ जा अकाल पुरख के कोल ही चल रहे हैं। हां जी, इसलिए जे मेरिया भैन कोल कितने ये होंगे ना शस्त्र दिल्ली, यह हाल नहीं सी होना जिहड़ा होया, पता की हाल होया, सरदार साहब होनी शीसगंज साहब दर्शन करने लिए आ रहे, उन्होंने सरदार नहीं पूछे मोटरसाइकिल से बैठे हुए, उन्होंने नहीं सी पता भी अज यह भाणा वरतना है, डांग दे के मोटरसाइकिल दे विच तारा च डेग के ते वारी वारी उन्हें ड्यूटियां लाई हुई सी, एक ने सरिया मार गया सरदार जी के सिर ते वो थले डिग पे, दूसरे ने धार मारी पिस्तौल पेट्रोल की, तीसरे ने वह जिद ना सिगरट पीते होंगे एवं करके वह दाली भी सिखा की चट फूकते थे, अग लाती सड़न दह गए, जिहड़ी बीबी जी सीगे वह बेचारे बड़े मायूस घबरा गए, भजन की कोशिश पर दुष्टा को कित्थे भजना, कोल ना ते तीर ना तफंग ना राम जंग ना धड़क तार अलियर ना कबंद कोरड़ा, ते कोल की सी जा राती टीवी वेख के आए सी ते जाके हुण वीसीआर वेखना सी, ये कोल सी ते बाकी कुछ नहीं सी, गहने पाए सी उन्हां दुष्टा ने, एक ने इधरों फड़िया दूसरे इधरों फड़िया कपड़े फाड़ के सड़क दे विच सरेआम बेइज्जतियां कीतियां, उन्हां दियां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने इन्हां दियां धीआं नूं दुष्टा दे कोलों छुड़ा के ते घरीं जाके छड़ के बाइज्जत तौर ते छड़ के ते आउंदे सी, उन्हां दुष्टा ने यह नहीं सोचिया कि भाई इन्हां ने कदी साडे ते उपकार कीते सी, ध्यान दे कोई जकारे फिर छड़ लांगे जरा हुण कर लई, यह नहीं सोचिया गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल बामण तिलक लाया होया जंजू पाया होया ते बहुत रोंदा होया कुरलाउंदा आया, कहिंदा महाराज मैं बच्चा विआह के लिया रहा सां ते मेरी नूह नूं आ दुष्ट जिहड़े ने मुगल दुंबे खाण वाले पूरा पूरा बकरा खाण वाले वो खो के लै गए, गुरु गोबिंद सिंह साहब एवं सिंह सजे सी, उन्हें आख्या भाई अजीत सिंह जी तुसीं उठो, अपने साहबजादे नूं कहा उठो नाल दो चार सिंह लै लो, इन्हां कोलों एड्रैस लै लो और उस देवी नूं हुणे ही आजाद करा के लियाओ और इस पंडित दे घर जाके आप पूरी हिफाजत नाल छड के आओ, उन्हां पंडितां ने अज उन्हां अजीत सिंह दीआं भैणां नूं बाजार दे विच नंगिआं करके साडी अखां दे सामने इन्नी बेइज्जती की जो मेरे को कहीं नहीं जाती, लेकिन मैं कहना कि सिंगो ए पांच शस्त्र रखो, धनक धार अणियर ऐसे तीर रखो जो बाहर आने लगे नाल ही अंदर, कमंद कोरड़ा, कमंद कोरड़ा एक ऐसा शस्त्र हुंदा है, ये सरिये लैके आते सी ना मारन, वह सरिया लैके जो आवे कमंद कोरड़ा एव भुआ के सरिये से मारी दा, वह फिर एव वल पा के सरिये नूं काबू कर लैंदा, खिच के सरी अगले का अपने हाथ च फल लेता, उन्होंने हथे कर छिटा एक ही सुटी का बस फिर बोरे सो दिया। इस वास्ते अज तुसी बाबा दीप सिंह साहब शहीद आजम का दीवान मना रहे हो, ये तुसी प्रण करके जाओ शस्त्र दे धार नहीं बनना, डरना नहीं, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने ए खंडे का अमृत सानू छकाया, खंडे का, खंडे का अमृत क्यों छकाया जी, कृपान का भी सिखा सकते और भी किसी चीज का, खंडे का, खंडे शस्त्र संस्कृत मौत कहते हैं, मौत खंडा, खंडे का अर्थ है मौत, ते महाराज ने उन्हें पानी में घोल के सिख नूं पिया दिता, मौत नूं घोल के सिख पी गया, सिख गुरु का सिंह मौत नूं घोल के पी गया, तो दुष्ट कहता मैं तेनों वेख लूंगा मार दूंगा, तो सिंह आता
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਮੈਂ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ, ਆ ਜਾਈ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਊ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਾਊ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਸਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।

बिना शस्त्र के संग नरंग भेड़ जानो, बिना शस्त्र के संग नरंग भेड़ जानो। गुरु गोबिंद सिंह का मुखवाक है, बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया इधरों फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जेड़े सी ना उन्हां दे खिलारे होए बंदूकां लैके वो भज गए, जेड़े दुष्टां दी फौज सी भज गई। ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्हां नूं पिस्तौल ते उन्हां रात ही खोले सी ते डंडे इन्हां ने हत्थ च फड़ाते सी, वो डंडे लैके शीशगंज अंदर आण बड़े। असीं डाय सा कीर्तन करन बाबे ने साडे राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ए राम ही डाय सी जपण। उन्हें सिखा आण के कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड्डो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जिउंदे साड़ देना, धीआं तुहाडियां खिच के लै जाणियां, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकदे ते कर लो। ए साडे सिंह साहब बहादुर महाराज नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दित्ती और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानू बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दित्ता सी। ओ शस्त्र गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने, प्यारे खालसा जी मेरी बेनती सुन लो, मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्हों के अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी ओ इन्हां दे नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर जिवें बबर शेर के नजारे उत्थे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ता हुंदा, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच्छ तुरंग स्पच बटो करकाड़ कृपाण कम पावेंगे, निक्षे जिम केर पर्वत ते ता सोर दिवाले पावेंगे, फल भाग पयाए संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया यदि एक तुक, निक्षे जिम केर पर्वत ते, केर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हुंदा है वह जो फिर पर्वत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान आउंदा है उन्हें फिर जे ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते होंगे गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। ते अगे की है सिंह बुके, सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर होआ। ए बाबे का छाल मार के ना शीशे के पौड़िया तो तलवार इतने फड़ ली ते जकारे छड़ दे पंज के वो 5-7 पिछे बेचारे मेरे वर्गे वो भी मगर मगर भजी आउण। ते जदों उन्हें वेख्या दुष्टा भई ये ते आ गए, तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वह 4,000 जिहड़ा सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दंद टुट गए, 50 सिपाही गोगे गोडे टुट गए। है जी जदों भज उठे नाले ए वेखण नाले भजन ते फिर एक उत्थे खलो गए। इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी नू मारदे हां, ना असी बुढ़े नू मारदे हां, ना असी बच्चे नू मारदे हां, ना असी भजदे नू मारदे हां, असी भजदे नू नहीं मारदे, तुसी प्यो दे पुत्तो खड़ो जाओ नहीं तो असी इधर जाने जिहड़े आ आउंदे ने उहनां नू छड्ड के लाल किले वाल भज उठे, वह पहला ही अगे भज उठे। हां जी 12,000 दुष्ट ए साडे बाबा जी ने, मैं तो कहना महाराज इन्हां नू वड्डिया होणा लो जी। गुरु गोबिंद सिंह ने दो शब्द में सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है, क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4वें दीवान लगा रज गए होवोगे। श्रवण करो गुरु गोबिंद सिंह की कहते, छतरी पूत हो

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव समाद भेद विस्माद रूप समाद रंग विस्माद रागे फिरे जन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड बिडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद मजोग विस्माद